वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज ऐतिहासिक आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है, तो इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमने आज आपके लिए कुछ खास गीत चुने हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे कवि प्रदीप की ये रचना। गाने वाले कलाकार थे अमीरबाई कर्नाटकी, प्रदीप और साथी। फिल्म का नाम था किस्मत। और आइए अब सुनते हैं फिल्म जागृति का गीत, आवाज प्रदीप की। गीत को लिखा है प्रदीप ने और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक छोला था।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: भूले बिस्ते गीत कार्यक्रम की ये है आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है शहीद। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी, खान मस्तान और साथी। गीत को लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और धुन बनाई है गुलाम हैदर ने।

0: सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशंस के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: या जाहिरातीत व्यक्त झालेल्या विचारांशी आकाशवाणी सहमत असेलच असं नाही। जाहिरातीतील दाव्यांबद्दल श्रोत्यांनी स्वविवेकाने निर्णय घ्यावा।
2: श्रोतहो, कार्यक्रमात यानंतर ऐकूया माणिक वर्मा यांच्या स्वरात रान पवार यांची ही रचना। संगीत आहे दशरथ पुजारी यांचं।

0: आयुष्याच्या अशा रंगेबिरंगी क्षणांना डोळ्यात साठवण्यासाठी दृष्टी खूप महत्वाची, म्हणूनच अशा अनमोल डोळ्यांची नियमित तपासणी करा.
1: सौजन्य देशपांडे आय हॉस्पिटल, कोथरूड, पिरंगुट आणि देहू.
0: संपर्क 89 39 30 41 42, 8929304142.
1: देशपांडे आय हॉस्पिटल, असेल दृष्टी तर दिसेल सृष्टी.
2: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर. 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य. इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं. सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस. तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org.
3: श्रोतो, कार्यक्रमात यानंतर ऐकूया माणिक वर्मा यांच्या स्वरात गदिमांची ही रचना. संगीत आहे दत्ता डावजेकर यांचं.

0: याबाबत अजूनही बोलूयात, पण या छोट्याशा विश्रांतीनंतर.
1: मैत्रिणींनो, अगदी जन्मापासून ते शेवटपर्यंत स्त्रियांच्या गरजा या वेगळ्या असतात आणि आम्ही त्या जाणतो. म्हणूनच न्यू वुमन्स हॉस्पिटल हे फक्त हॉस्पिटल नाही तर स्त्रियांचं दुसरं माहेर. न्यू वुमन्स हॉस्पिटल, आपटे रोड, पुणे. संपर्क 88 57 66 66, 888-57-6666.
0: डॉक्टर, जसं तुम्ही म्हणालात की जन्म झाल्या झाल्या लगेच बाळाला दूध दिलं गेलं पाहिजे, पण काही काही केसेसमध्ये आपण बघतो की बाळ ही प्री मॅच्युअर जन्माला येतात, 7व्या महिन्यात 8व्या महिन्यात. मग त्या केसेसमध्ये दूध दिलं पाहिजे की नाही दिलं पाहिजे याबद्दल सांगा.
2: इनफॅक्ट मॅडम, ये बच्चों को और ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क का जरूरत है. आई वॉन्ट से ब्रेस्ट फीडिंग, बिकॉज 8 महीने के बाद जनरली बेबी का मेच्युरिटी आता है कि वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर पाए, बट मदर्स मिल्क का इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. तो ऐसे बच्चों को हम जनरली मदर का मिल्क एक्सप्रेस करके आइदर थ्रू ट्यूब और थ्रू वाटी स्पून और कप हम फीड करने का उनको सलाह देता है. इनसे बच्चों को इन्फेक्शन के सामने, पेट के रोगों के सामने, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्प हो जाता है.
0: आता काही काही कंडिशन मध्ये, जसं आपण म्हणलं की बाळ प्रीमॅच्युअर जन्माला येतं, काही कंडिशन मध्ये आईला काही इन्फेक्शन असू शकतात ड्युरिंग डिलिव्हरी. समजा ताप आला असेल किंवा सर्दी खोकला झाला असेल, तर या केसेस मध्ये जर आई आजारी असेल तर मग दूध देणं गरजेचं आहे की नाही?
2: ये भी एक कॉमन क्वेरी रहता है. सो इनमें मैडम स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि मदर को चिकन पॉक्स हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, दीज आर ओनली द कंडीशन जहां पे हम आइसोलेशन मदर और बेबी को थोड़ा दूर रखने को बोलते हैं. अदरवाइज इन ऑल अदर इलनेस मदर कैन टेक प्रिकॉशन. मदर मास्क पहन सकती है सपोज वायरल इन्फेक्शन है तो, और उनका मदर का ट्रीटमेंट चालू रखते हुए डॉक्टर की सलाह लेके डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते.
0: सो मतलब उनके हेल्थ का बच्चों के दूध से कोई भी कनेक्शन नहीं
2: रहता. सो व्हाट वी से इज देयर इज अ गट ब्रेन एक्सेस एंड गट मेमोरी एक्सेस.
1: ओके.
2: सो कई बार मदर और बेबी डायड की तरह है. सो जो इन्फेक्शन मदर को है या जो इन्फेक्शन बेबी को है, उसके सामने इम्यूनिटी मदर बनाती है और बच्चे को वो डिसीज के सामने प्रोटेक्शन देती है. सो उल्टा बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग देना ज्यादा इम्पॉर्टंट है.
0: याच सगळ्या गोष्टींमध्ये अजून एक महत्वाचा क्रायटेरिया असतो, म्हणजे आता सगळ्या बायका या वर्किंग वुमन असतात.
2: यस मॅडम.
0: आणि बऱ्याचदा त्यांना म्हणजे 1.5 महिन्यानंतर 2 महिन्यानंतर काम सुरू करावं लागतं.
2: यस मॅडम.
0: मग या कंडिशन मध्ये ब्रेस्ट फीडिंग करणं कसं गरजेचं आहे?
2: सो फर्स्ट सलाह हमारा ये है की ब्रेस्ट फीडिंग एक जर्नी है एंड यू शुड एन्जॉय दॅट जर्नी. एज आई टोल्ड यू, ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस बेबी के दिमाग और लॉन्ग टर्म के लिए है. सो एज मच एज पॉसिबल आप ब्रेस्ट फीडिंग करने को कोशिश कीजिए. आज के जमाने में वर्क प्लेसेस भी काफी ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली होते हैं.
1: राइट.
2: एंड अगर समझो नहीं ही हो पाता है तो एटलीस्ट ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिले, इसके लिए मदर पंप करके ब्रेस्ट मिल्क स्टोर करके रख सकते हैं.
1: ओके.
2: एंड दैट दे कैन गिव ड्यूरिंग देयर वर्क टाइम, बट एज मच एज पॉसिबल एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ एंड अकॉर्डिंग टू WHO फर्स्ट 2 इयर्स तक ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए.
0: आपल्याकडे आपण बघतो साधारणतः, जसं तुम्ही म्हणालात की 6 महिने, फार तर 8 महिन्यापर्यंतच ब्रेस्ट फीडिंग केलं जातं, त्याच्यानंतर मात्र फीडिंग बंद करून टाकतात. मोस्टली 2 वर्षापर्यंत 3 वर्षापर्यंत दूध पाजलं जात नाही किंवा अदर नंतर मिल्क प्रोडक्शनच कमी होतं, तर हे योग्य आहे का? मिल्क प्रोडक्शन कमी होतं हे बरोबर आहे का? नाही झालं पाहिजे.
2: येस मॅडम. सो जसं आम्ही डिस्कस किया 6 महिने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महिने के बाद हम बच्चों को वीनिंग का सलाह देते हैं. हालांकि उनको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए. न्यूट्रिशियस फीडिंग एज WHO सेज 2 साल तक रहता है.
1: Okay.
2: तो धीरे धीरे धीरे वीनिंग करना है बट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है एंड नाइट टाइम फीडिंग इवन 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं.
0: अजून एक महत्वाचा प्रश्न की जेव्हा काही बायकांची स्त्रियांची पहिली प्रेग्नन्सी असते त्यावेळेला जे जन्माला आलेलं बाळ असतं त्याला दूध सक करता येत नाही आणि आईला सुद्धा ते दूध देण्याची प्रॅक्टिस नसते, मग अशा वेळेला काय तुम्ही त्यांना काउन्सिल करता किंवा कशी आईला मदत होते की ब्रेस्ट फीडिंग कसं करायचं?
2: येस मॅडम. सो स्पेसिफिकली आज के जमाने में जब कई बार मदर्स अकेले रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं रहते, ये क्वेरी बहुत रहता है. सो हमारा जो पहला सलाह रहता है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कीजिए. ब्रेस्ट फीडिंग आने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज बेबी लैचिंग ऑन ब्रेस्ट और दूसरा रहता है एक स्टिमुलस पंपिंग.
1: अच्छा.
2: सो ये 2 चीज कर सकते हैं. अच्छा ब्रेस्ट फीडिंग होने के लिए बेबी का पोजिशन और बेबी का ब्रेस्ट पे अटैचमेंट, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: Okay.
2: अगर ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस पेनफुल है तो दोनों के लिए वो अच्छा नहीं, ना मदर कंटिन्यू करे.